0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने

Mirchi, it's hot.

0: कई बार मैं सोचती हूँ व्हाट इज द नाइसेस्ट थिंग दैट माय एक्स डिड फॉर मी, और मेरे जहन में उसका आंसर एक ही आता है, ही मेड श्योर दैट आई वाजंट विद हिम. क्योंकि अगर मैं उसके साथ होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती, फॉर श्योर. टॉक्सिसिटी की प्रतिमूर्ति, उसने तो टॉक्सिक होना एक ओलंपिक स्पोर्ट बना लिया था. वो तो मैं टाइम पर बच गई, नहीं तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती. लेकिन अगर मेरी तरह आपको भी यही लगता है कि आपके एक्स ने आप पर ये एहसान किया कि वो आपकी जिंदगी से कट लिया एक अच्छे टेलर की तरह, then why don't you hit me up? We'll compare notes. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. And talking of Olympic sports, dating guys who are major red flags seems to be my personal favorite Olympic sport. On that note, while you find me on your socials, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Entertainment बहुत हो रहा है आजकल. कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है. लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है. एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कम बैक कर रही है. पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है. बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं. और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉक 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम. लेट्स बिगिन. फर्स्ट अप, गाना नंबर 20. देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है. This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai. Number 2.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल। लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में A.R. रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज Mascara, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 14.

0: तेरा हो जाऊं, अ टिपिकली सचिन जिगर सॉन्ग विद जुनीता गांधी एंड स्टेबिन बेन। एंड अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद थैंक गॉड न्यू वॉइसेस आर इमर्जिंग, वरना हर हीरो की एक ही आवाज हुआ करती थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, नाउ दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कम्प्लीट कॉमेडी फिल्म। न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर बहुत। इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है। What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, because for one moment वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सरवाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल। दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10 The

वहीं दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

0: See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए.
1: And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला,
0: वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए,
1: like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर थ्री

Rizda has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, और आज मैं आपको एक किताब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बात है 2010 की अमीश त्रिपाठी और उनकी लिखी हुई किताब The Immortals of Melhua, शिवा ट्रिलॉजी, उसका पहला हिस्सा. और जब मैंने ये किताब पहली बार उठाई तो मैं बहुत बहुत अंदर चला गया और सच कह रहा हूं बाहर ही नहीं निकल पाया. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं. मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती. एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं. और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है. लेकिन ये सवाल ही गलत है यार. असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी. शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके. अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है. इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद. वो लोग कहां हैं, धुरंधर कहां हैं और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो. नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता. नंबर 1.

0: शरारत 13 हफ्ते ऑन नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर एक नई एंट्री है, गाने का नाम है छोरी। मिका सिंह एंड दया द रैपर का है गाना। उसके बाद मिट्टा रॉर का शीशा पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। मिटारोर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटारोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए, उस पे गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। @RJ कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s एंड 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 years, कॉन्टेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कॉन्टेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोज जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट व्हिच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड्स, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग, वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू। इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती हैं एंड हर फैंस आर इन्वॉल्वड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स उनके कॉमेंट्स में, अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के ड्रम्स बजा के सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन, क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज एंड शी हेडलाइंड वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ, आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका व्हिच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट, दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Man oh man, word by word, it feels that she is really feeling her song. Jeannie की आवाज़ होने की composition, गाने का नाम है फीका. ये गाने सुनते ही लगता है that Jeannie is not just another independent artist. She is one of those artists of this generation that wants to grow with the new audience. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, कोई ऐसे नए independent artist हैं जो आपने discover करे हैं, हमसे आगे share करो and we might feature them and their songs next week. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
1: sun rahe aap. This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jaye. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani hai, bindas aake hit me up. I truly believe that gaane share karne se pyar padta hai. Aaj hum independent pop music ke bare mein jab baat karte hain, pop stars ke bare mein baat karte hain, all of them have been influenced and inspired by 90s and 2000s ka indie pop. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स। आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. Needless to say that indie pop era was the golden era of pop music. इसीलिए it's time for what we call हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी उस कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेंबर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को बटरफ्लाइज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ दिस सॉन्ग मेक्स मी फील. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक टू मी. बाबुल सुप्रियो की आवाज में दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. अल्टीमेट लव बेंडर है ये गाना. एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, हमारे साथ 90s एंड 2000s के ऐसे गाने शेयर करो विच यू थिंक स्टिल हिट्स होम. माय साउंड प्रोड्यूसर अश्काय और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू've हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौड़ का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन द शो व्हिच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanika. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दैया द रैपर का छोरी अनन्या अवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then गाना नंबर 9 पर मिट्टर और का शीशा.
2: तेरी आंखें पिछलों के सुन दो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. गाना नंबर 7 पर इस आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर. डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
4: मुन्ने साम साम रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: hot.
1: तेरी मम्मी की जय।

बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

Michi. It's hot.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: अच्छा लगा?
1: रहते हो
0: सच?

हेलो माय मिर्ची दीवानों, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, जो अभी अभी शुरू हुआ है। सुबह सुबह का पहला चाय का सिप या फिर कॉफी की पहली पहली खुशबू और सुबह सुबह मिर्ची मॉर्निंग्स पर सबसे पहले मेरी आवाज। वैसे ऑनेस्टली यार, देसी एक्सपैट की लाइफ जो है वो किसी नेटफ्लिक्स के ड्रामा से कम थोड़ी ना है। सुबह 7 बजे उठकर हुडी पहन के बाहर निकलते हैं और फिर मम्मी से इंडिया में फेस टाइम पर बातें करते हैं और मम्मी का हर बार का सेम डायलॉग है, लगता है कुछ खाना वाना खाना बंद कर दिया है। और ये सबको हैंडल करने के बाद बॉस के ईमेल्स भी हैंडल करने पड़ते हैं और हाँ, इस सब के बावजूद लाइफस्टाइल और वेदर को भी झेलना पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड साथ में हो तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। सेम उसी तरह अगर मॉर्निंग्स अच्छी हो तो पूरा दिन बन जाता है। और दिन बनाने आती हूँ मैं, बोले तो प्रिसला, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 6472 44। फिलहाल stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में। यू ट्यून इन टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड एक्सक्लूसिवली यहां पर हम करते हैं टाइम ट्रैवलिंग। हिस्ट्री में आज के दिन काफी कुछ ड्रामे हुए थे। 1962 में दी आइकॉनिक मैरिलिन मनरो सैंग हर सुपर फेमस सल्ट्री वर्जन ऑफ हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट टू जॉन एफ कैनेडी एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन। सबसे पहले आज के दिन है वर्ल्ड आईबीडी डे, विच इज एन अवेयरनेस डेडिकेटेड टू पीपल लिविंग विद क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। और आज के दिन है नेशनल मे रे डे इन द यूएस। ये ऑफिशियली अप्रूव्ड एक्सक्यूज है टू स्टेप आउटसाइड, सोक अप सनशाइन एंड थोड़ा सा विटामिन डी लेने का। वैसे आज के दिन इट्स ऑल्सो नेशनल डेविल्स फूड केक डे, विच साउंड्स इविल बट टेस्ट्स लाइक फॉरगिवनेस। एंड वे बैक इन 1536 एन बोलीन वॉज एग्जीक्यूटेड बाय किंग Henry VIII. It's proof that toxic relations existed long before Instagram came. और इसी बात पर मुझे follow कर लो Insta और X पर, मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. फिलहाल stay tuned and stay hot. Yeah.

0: Hola my people, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर अब वेदर का हाल चाल जानने का टाइम. So listen up, right now it's around 70 degrees Fahrenheit and it's pretty sunny which sounds cute and innocent. लेकिन emotionally attached मत हो जाना वेदर से, क्योंकि afternoon आते आते temperature जो है वो climb करने वाला है. It's gonna go up to 95 degrees Fahrenheit. And not that you need that information today, but आज के दिन पिछले 24 घंटों की तरह zero precipitation है, यानी कि बरसात का नामो निशान नहीं है. It's going to be dry cleaning weather type का दिन. And later you'll get partly cloudy skies around 4 PM. लेकिन honestly those clouds are just there for moral support. So heads up, आज heat advisory भी है in effect till Wednesday evening, which means you gotta hydrate yourself like your life depends on it. Because honestly it kind of does. Carry your water, carry your sunscreen, and please carry me, बोले तो Priscilla, with you on Mirchi Mornings. और अभी फटाफट से मुझे follow करो Insta और X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल चपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
1: मिर्ची इट्स हॉट.
2: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज दैट टाइम ऑफ द शो जहां पर हम पता करते हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है. सबसे पहले सानिया हैज बिकम द फर्स्ट वुमन इन द इंडियन एयरफोर्स टू अर्न द प्रेस्टीजियस कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रैंक, बेसिकली द हाईएस्ट इंस्ट्रक्शनल रेटिंग फॉर मिलिट्री पायलट्स इन इंडिया. शी ट्रेन एट द फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल इन चेन्नई एंड कम्प्लीटेड सुपर रिगरस फ्लाइंग एंड ग्राउंड ट्रेनिंग. नंबर टू पर अ डीपली ट्रेजिक एंड सेंसिटिव केस आउट ऑफ इंडिया इन्वॉल्विंग ट्विशा शर्मा. ट्विशा वॉज फाउंड डेड जस्ट 5 months after her wedding and allegations are now being exchanged between both families. Her parents have accused her husband and in-laws for dowry harassment, while her mother-in-law has made separate claims regarding Trisha's career and family dynamics. And number three per, Aaron Rye, the Indian origin golfer from Wolverhampton, just became the first Englishman in 107 years to win the PGA Championship. He started golfing at the age of 4 and turned pro at 17. Also, fun fact, he's famous for using iron gloves during tournaments. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hu Prisila tumhare saath mein. Sun rahe ho Mirchi Morning. Sunte raho mujhe aur jaakar mujhe follow bhi kar lo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार

मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. सो आईपीएल 2026 गेव अस वन ऑफ द स्वीटेस्ट मोमेंट्स एवर ड्यूरिंग द चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद क्लैश एट द एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई. आफ्टर द टीम फोटो, लेजेंडरी एम एस धोनी कैजुअली पिक्ड अप हिज ओन चेयर बिकॉज अपेरेंटली बींग अ क्रिकेट आइकॉन, कैप्टन कूल एंड एवरीवन्स इमोशनल सपोर्ट प्लेयर स्टिल डजंट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग बेसिक चोर्स. बट देन यंग सीएसके प्लेयर उर्विल पटेल rushed in and basically said nope, not on my watch, and insisted on carrying the chair himself. Internet immediately melted and said oh, because that's like our desi respect culture. Honestly, this is why everyone loves Dhoni. Because unme koi superstar wala attitude nahi hai na. Wo kabhi aise nahi dikhate ki excuse me, do you even know who I am? To batao aise aur kaun se celebrities hain? Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 90336472444. Fatafat se pe messages drop karo. Stay tuned and stay hot.

माय बर्थडे बेबीज, मिर्ची मॉर्निंग्स पर वो टाइम आ चुका है जहाँ पर हम बातें करते हैं तुम्हारे स्पेशल डे के बारे में। तो आज के दिन तुम अपना बर्थडे किन के साथ शेयर कर रहे हो? सबसे पहले ग्रैमी विनिंग सिंगर सैम स्मिथ is in your birthday squad. You also share your birthday with India's very own king of comedy, Veer Das. इसका मतलब ये कि तुम्हारा सार्केज्म लेवल इज 3000 एंड देन रॉक म्यूजिक लवर्स लेजेंडरी गिटारिस्ट पीट टाउनसेंड वाज आल्सो बोर्न टुडे। बेसिकली आज के दिन बर्थडे स्क्वाड्स गिविंग लाइक सुपर टैलेंटेड ड्रामा ह्यूमर एंड मेन कैरेक्टर एनर्जी। And people born on 19th of May seem emotionally versatile. One minute wo deep thoughts mein hote hain, next minute wo kick attack karte hain. Aur agar ye bada hi relatable behavior hai to mujhe batao message karke ya apne birthday shout out bhej sakte ho Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIBRIS. Tum chaho to mujhe cake bhi bhej sakte ho, lekin no pressure. And also follow me there and WhatsApp par mera number hai 90336472444. And abhi Mirchi dar bangers ka time hai, stay tuned and stay hot.

0: माय गोल्ड लवर्स, मैं हूँ प्रिसुला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का आज का हाल क्या है।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,540, $4,540 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइस अमेरिका में इंडिया से अबाउट 15% चीपर है। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान से अमेरिका में गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं। कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से समझें कि किस तरह से 15% गोल्ड का प्राइस अमेरिका में इंडिया से सस्ता है, और गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: एंड देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसुला तुम्हारे साथ में, मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6 4 7 2 4 4. Stay tuned and stay hot.

0: मॉर्निंग जैसे मैं ऊपर सलाह तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग। जरा अब हम सुनने वाले हैं सितारे क्या कहते हैं।
1: मिर्ची राशि जोन
0: एरीज यानी मेष राशि, आज थोड़ा सा लो फील कर सकते हो बिकॉज मार्स जस्ट एग्जिटेड योर साइन, बट रिलैक्स, बॉस एनर्जी स्टिल इंटैक्ट है। जो न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो टाइम पर मोनेटाइज हो सकते हैं। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, अटेंशन आ रहा है तुम्हारी तरफ वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो मे बी टूडे डोंट वेयर दैट आई वोक अप लाइक दिस हुडी टू जूम मीटिंग्स। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 44। जेमिनी यानी मिथुन राशि, दैट वियर्ड एंग्जाइटी वाली फीलिंग वो टेम्पररी है यार। सन इज मूविंग इनटू योर साइन सून एंड कंफ्यूजन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज नियॉन ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, लव वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग टुडे। इफ यू लाइक समवन मे बी स्टॉप स्टॉकिंग देयर स्टोरी साइलेंटली एंड जस्ट से हाय, यूनिवर्स इज बेसिकली नजिंग यू टुडे। लकी कलर फॉर यू इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 27। लियो यानी कि सिंह राशि, करियर स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटर देन योर रिंग लाइट टुडे। पीपल आर नोटिसिंग योर efforts, so walk into that meeting like background music is playing for you. Lucky color for you is bright red, lucky number is 3. Virgo yani kanya rashi, mind readers don't exist sweetheart, if you need help ask for it. Today's lesson is communication before frustration. Lucky color for you is gray, lucky number is 31. And that's the first part of rashi zone. Baki bata second part lekar thodi si der mein main wapas aaungi, tab tak ke liye tum lo ye mirchi dar bangers wala break. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स विद योर गर्ल प्रिसिला। अब यहाँ पर सितारे चमकने वाले हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, यू हैव बीन कीपिंग टू मच इनसाइड लेटली। डोंट सफर साइलेंटली यार, टॉक इट आउट। इवन योर ब्रेन इज टायर्ड ऑफ होल्डिंग स्टाफ मीटिंग्स एट 3 AM। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ व्हाइट, लकी नंबर इज 12। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इफ देयर इज टेंशन विद समवन, टुडे इज द परफेक्ट डे फॉर सॉर्टिंग इट आउट। ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन पैसिव अग्रेसिव इंस्टाग्राम स्टोरीज। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 4। सजिटेरियस यानी धनु राशि, टीम वर्क इज हाईलाइटेड टुडे, बट बी केयरफुल, डोंट बिकम द अनपेड इंटर्न ऑफ द ग्रुप प्रोजेक्ट। बाउंड्रीज भी कोई चीज होती है, उन्हें सेट करो। लकी कलर फॉर यू इज सनसेट पीच, लकी नंबर इज 5। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, योर स्टैंडर्ड्स आर स्काई हाई टुडे एंड ऑनेस्टली as they should be, but remember not everyone operates with your excel sheet and ambition energy. Lucky color for you is midnight purple, lucky number is 8. Aquarius yani kumbh rashi, Mars is pushing you to finally deal with that issue you've been avoiding. Aaj we'll see later wala attitude kam nahi aane wala hai, adulting activate ho chuki hai. Lucky color is ice silver and lucky number is 36. Pisces yani mean rashi, life is throwing challenges, throw confidence back at it. Today you need bold energy, not maybe next week wale vibes. Main character mode on kar lo dost. Lucky color for you is turquoise blue, lucky number is 14. Mera naam hai Priscilla, sun rahe the Mirchi Mornings and that was Mirchi Rashi zone number 2. Abhi filhal aane wale hai Mirchi dar bangers aur tum jaane wale ho Instagram aur expert taki mujhe follow kar sako. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर अगर मैसेज करना चाहते हो तो नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 6472 44. Stay tuned.

Wow, what a ride it's been. This is your girl Priscilla with you wrapping up Mirchi Mornings. तुम्हारा डेली का मॉर्निंग मैगजीन जो है ना वो अब एंड हो चुका है आज के लिए. जाने से पहले लेकिन तुम्हें बताती हूँ एक स्पाइसी सा अपडेट. अ वीडियो ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइविंग ड्यूरिंग हिज यूएई विजिट हैज गॉन वायरल ऑनलाइन विद पीपल हिलेरियसली कंपेयरिंग द एंट्री टू अक्षय खन्ना's स्टाइलिश सीन फ्रॉम धुरंधर. बिकॉज बियॉन्ड द मीम्स एंड ड्रामेटिक एडिट्स द विजिट वॉज एक्चुअली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ India UAE diplomatic and economic relationships. लेकिन social media being social media, important meeting गई sideline पे. Cool effects डालकर सबसे पहले swag वाला गाना लगा दिया और उसका meme बना दिया. Honestly, Indian memers can turn anything into cinema. चाहे वो wedding की entry हो, which is cinematic nowadays, office का resignation हो, which is very dramatic nowadays, and even entering Costco with AirPods on, feeling like you're the main character of this movie that's going on. कुछ लोग ना online comparisons ढूंढ़ी लेते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा funny होते हैं, चाहे कितने भी ज़्यादा exaggerated क्यों ना हो. वैसे meanwhile, desi Instagram editors already added slow motion, boss booted. Music and transition effects on Modi ji's video. Because subtlety to hamare desi life ka part hai hi nahi. And on that note, my lovely people, time for me to leave you for today with good vibes, good music and a lot of happy thoughts. You be good. Have a great day. Aur milungi tumhe kal, same time, same place, same frequency. Mera naam yaad rakhna Priscilla. Aur mujhe follow karna mat bhulna Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033647244. Abhi ke liye tada. Stay tuned and stay hot.

0: बचपन में कोई भी काम करने से पहले हम ऐलान कर दिया करते थे, जैसे कि अगर जोक सुनाने की भी बात होती थी ना तो हम यही बोलते थे, एक चुटकुला सुनाओ।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And वाकई में यार, मतलब बचपन में एक तो हम कहाँ कहाँ से तरह तरह के जोक्स उठा के लेकर आया करते थे, और एक ये डायलॉग जोक सुनाने से पहले ये तो फर्ज बनता था, एक चुटकुला सुनाऊं। आज तो कॉमेडी कहाँ से निकल जाती है पता ही नहीं लगता, लेकिन तब हमें इजाजत लेने की इतनी ज्यादा आदत थी कि चुटकुला सुनाने के लिए भी हम पहले इजाजत लिया करते थे। इट्स जस्ट लाइक मैम मे आई कम इन, हाँ बेटा कम इन, वैसे ही चुटकुला सुनाओ, हंसनाओ ना, तो हम सुनाना शुरू करेंगे जब तक कोई हाँ नहीं बोल देता। एंड यू नो, इससे मुझे एक और बात बड़ी प्यारी सी याद आई, और वो ये कि एट दैट टाइम आपके पास जोक्स के लिए या तो स्कूल हुआ करता था, दोस्त हुआ करते थे, या आपके कजन्स आपको जोक्स बताया करते थे। ये सोशल मीडिया या फिर यू नो गूगल तो था ही नहीं कि आपको जोक्स पता होते कहीं से, आप कहीं से टीप लो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या हंसाने के लिए। तो एट दैट टाइम ये लोग हुआ करते थे, एंड आई रिमेम्बर नाउ कि मैंने एक जोक बुक खरीदी थी, हाँ एक जोक बुक जिसके अंदर जोक्स पे जोक्स लिखे हुए थे, और फिर वो जोक्स जो थे मैं पढ़ने के बाद समझने की पहले कोशिश किया करती थी, उसके बाद फिर उसको सुनाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन सच बताऊं तो सारे जोक्स एक साइड और हाथी और चींटी के जोक्स एक साइड, बेस्ट जोक्स ऑफ दोज टाइम्स। इनफैक्ट आज भी वो जोक्स अगर कोई सुना देता है ना तो भी हंसी आ जाती है। चलो जी इसी बात पर मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

98.3 98.3 98.3 Mirchi. It's hot.

0: 90s बॉलीवुड की फिल्मों के टाइटल्स सिर्फ टाइटल्स नहीं थे बॉस, पूरे एसेज हुआ करते थे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And those were the days जब फैशन ही लंबी लंबी मूवीज के टाइटल्स का होता था। And no one dared to release a movie जिसका one word नाम हो। और यही वो मूवीज हैं जो आज भी हमें डमशराज खेलने में बड़ा मदद करती है और हमारी टीम को जिताती है। And I've decided कि मैं आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज, जिनके नाम या तो हमने डमशराज में सुने हैं, नहीं तो आगे ये नाम हमें डमशराज जीतने में मदद करेंगे। जिस देश में गंगा रहता है, ये मूवी याद है आपको? मुझे डेफिनेटली याद है। गोविंदा, सोनाली बेंद्रे और रिंकी खन्ना की ये मूवी, वो दौर था जब गोविंदा की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और ये फिल्म इस लिस्ट में एक और नाम था। ये महेश मांजरेकर डायरेक्टेड पहली कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन शुक्र है इसके फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने कॉमेडी फिल्म्स बनाने का आइडिया ड्रॉप नहीं किया और ऐसे ही ये फिल्म हमारे डमशराज की लिस्ट में शामिल हो गई। और अगर अभी तक आपने इस फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो मैं तो कहती हूँ अगली बार के लिए डेफिनेटली याद रखना इस फिल्म का नाम। आओ चलो इसी बात पर आपको बिग बॉस, ओहो आई मीन यस बॉस का ये प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? इस फिल्म का नाम तो सुना ही होगा।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हम मिलेनियल्स ने जब जब डमशराज खेला है, इस फिल्म के नाम का इस्तेमाल डेफिनेटली किया है। और जो सवाल हम पूछते आ रहे हैं डमशराज में, वो यही है कि ये फिल्म एग्जिस्ट भी करती है क्या? एंड द जवाब इज यस, करती है। और मैंने सोचा है कि मैं आपको डमशराज की वो फिल्मों के टाइटल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज, जिन पर आज तक हमने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया है। दिस फिल्म स्टार्ड नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी एंड स्मिता पाटिल। और ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें बात नसीर साहब के कैरेक्टर के गुस्से को लेकर की जा रही थी, जो गुस्सा करते करते अपने गुस्से की वजह से समझता चला जाता है और उसे ये पता लगता जाता है कि जो गुस्सा वो पहले गरीबों पर करता था, वो उसे डिजर्व नहीं करते हैं, डिजर्व तो सिर्फ अमीर करते हैं। और इसी चक्कर में अल्बर्ट पिंटो के जो गुस्से का मकसद और मतलब था, वो बदल जाता है, लेकिन गुस्सा वो चलता चला जाता है। इसी के साथ बॉस, अब मदहोश होने का टाइम आ गया है, क्योंकि कमिंग अप कुमार सानू की आवाज में ये गाना फ्रॉम द फिल्म कभी हाँ कभी ना। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्राण जाए पर शान ना जाए, साउंड्स लाइक अ डायलॉग, लेकिन ये अर्ली 2000s की एक फिल्म का टाइटल है जो कि डम शराज में अक्सर इस्तेमाल होता है।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं पुरानी उन सारी फिल्मों की बात करूंगी जिनके टाइटल्स हमने अक्सर डमशराज में इस्तेमाल किए हैं या फिर सुने हैं, लेकिन सवाल भी किए हैं कि क्या ये फिल्म वाकई में एग्जिस्ट करती है। एंड यस, ये फिल्म एग्जिस्ट करती है। टेलीविजन एक्टर अमन वर्मा का ये पहला मूवी ब्रेक था और इस मूवी में, जिसमें कि एक्टर्स की लंबी लाइन है, इसमें काम किया है काफी सारे मराठी थिएटर आर्टिस्ट्स ने। नम्रता शिरोडकर, रवीना टंडन, दिया मिर्जा, सुष्मिता सेन का स्पेशल अपीयरेंस एंड महेश मांजरेकर। ये फिल्म टीवी पर खूब हिट हुई थी क्योंकि तब टीवी पर ये नया नया ट्रेंड शुरू किया था जी टीवी वालों ने कि रीसेंट मूवीज टेलीकास्ट की जाएंगी, और ये मूवी इसी एक्साइटमेंट में हिट हो गई। और अब एक जबरदस्त बात होने वाली है क्योंकि जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ ना, वो है ही ऐसा। निगम की आवाज में कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपने जमाने की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म और हमारी जिंदगी भर के लिए डम शिराज खेलने की फिल्म है ये।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मैं उन फिल्मों के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ जो कि 90s की फिल्में हैं, या फिर 90s से लेकर अब तक हम मिलेनियल्स ने डम शिराज में इन फिल्मों के टाइटल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन फिल्मों के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। सो द नेक्स्ट फिल्म इन लाइन इज रूप की रानी चोरों का राजा। जितनी ये फिल्म एक्सपेंसिव थी ना, उतनी ही बड़ी ये फ्लॉप भी रही थी। और एक किस्सा है अनिल कपूर के साथ जो हुआ, और वो ये था कि ये फिल्म फ्लॉप है, इस बात की खबर अनिल कपूर को 2 दिन पहले ही लग गई थी, क्योंकि कुछ जगहों पर ये फिल्म स्क्रीन हो चुकी थी और उन्हें कोई कॉल्स नहीं आए थे टू कंग्रेचुलेट हिम फॉर द फिल्म। फिल्म के फ्लॉप होने की वजह जावेद अख्तर की राइटिंग को कहा गया, बट अनिल कपूर ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज परफॉर्मेंस। और इस फिल्म के फ्लॉप होने का रीजन जो भी रहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म बनी थी इस वजह से ताकि हमारे डम शिराज की लंबे टाइटल वाली फिल्म की लिस्ट में इस फिल्म का नाम भी ऐड हो सके। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सलीम लंगड़े पे मत रो, सच सच बताओ आप आज तक सोचते हो ना कि ऐसी तो कोई फिल्म थी ही नहीं और ये सिर्फ डम शिराज के लिए ही बनाया गया एक मन घड़ंत टाइटल है मूवी का।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं माय लॉर्ड, नहीं, ये फिल्म वाकई में एग्जिस्ट करती है। ये बाकायदा एक प्रॉपर फिल्म है जो कि अगेन रिलीज तो 80s में हुई है लेकिन आज तक हमारे डम शिराज का हिस्सा है। और शुरू शुरू में तो वी यूज्ड टू क्वेश्चन कि वाकई फिल्म है या यूं ही कुछ भी टाइटल दे रहे हैं यार। फिर ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म डम शिराज फिल्म ही है, ये एग्जिस्ट करती तो नहीं है, लेकिन इस गेम के लिए हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि ये फिल्म नहीं कोई मनगढ़ंत टाइटल है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होता, जो चीज ना मिले वो खोना नहीं होता और हर डाउटफुल टाइटल वाली फिल्म की एग्जिस्टेंस ना होना नहीं होता। हेंस प्रूव्ड कि दिस लंबे टाइटल की लिस्ट में सवार इस फिल्म का टाइटल और हमारे डम शिराज की रेगुलर पार्टिसिपेंट फिल्म डज एग्जिस्ट। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची।

0: इनके नाम में भी नवाज है और ऊपर वाले ने भी इन्हें टैलेंट से खूब नवाजा है। आई एम टॉकिंग अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका आज बर्थडे है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और यूपी के बुधाना में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक किसान फैमिली को बिलोंग करता था। किसको पता था कि वो लड़का जब बड़ा होगा तो बॉलीवुड में बड़ा बड़ा नाम खेल जाएगा एंड दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहलाएगा। हमें ये तो बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें काफी सारे टफ टाइम्स आए हैं, लेकिन आपको पता है कि एक्टिंग ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री किया था एंड उन्होंने एज अ केमिस्ट भी काम किया था, लेकिन वो अपनी जॉब से ना बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ क्रिएटिव करना था, जिसके लिए वो दिल्ली मूव कर गए और फिर उन्होंने NSD ज्वाइन किया। और NSD में क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है उन्होंने एक दिन के अंदर 10 ड्रामास में पार्टिसिपेट किया एंड ये भी तब जब वो रात में एज अ वॉचमैन काम किया करते थे, यानी कि रात में वॉचमैन की ड्यूटी और दिन में ये 10 ड्रामास का काम। तब जाके उन्हें NSD के अंदर दाखिला मिला और 1996 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम NSD। अब आपसे बात करते करते ना मुझे एक एडवर्टाइजमेंट याद आ रहा है, याद है आपको? मतलब एक झलकी सी याद आ रही है, प्रोडक्ट मुझे क्लियरली याद नहीं है, कि नवाज जो है वो उस एड के अंदर चलते हुए जा रहे हैं एंड देयर इज दिस वॉचमैन हु स्लीपिंग अपनी ड्यूटी टाइम पर, लेकिन नवाज उन्हें कुछ कहते नहीं है। अब समझ आया कि वो जो एड है उसका रेलेवेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद वो काम किया है और वो जानते हैं कि ये जो इंसान अभी ड्यूटी पर सो रहा है ना, इसने दिन में क्या क्या पत्थर तोड़े होंगे। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज बी काइंड टू पीपल, बिकॉज आपको नहीं पता है कि उनकी बैक स्टोरी क्या है। विशिंग दिस अमेजिंग टैलेंटेड एक्टर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दिल से है ये आज भी किसान, लेकिन करते हैं ये एक्टिंग का काम. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द बर्थडे बॉय नवाजुद्दीन सिद्दीकी.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, in an interview, नवाजुद्दीन ने खुद बात कही है कि since वो एक farmers family को belong करते हैं, तो उन्होंने आज भी खेती बाड़ी छोड़ी नहीं है. जब भी वो कभी अपने गांव जाते हैं ना, तो वो make sure करते हैं कि वो भी अपने खेत को cultivate करें और वहां पर काम करें. इसके पीछे की एक बड़ी खूबसूरत वजह बताई उन्होंने. जिस तरीके से आप और मैं ऑन अ डेली बेसिस कुछ एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, जिससे कि हमें कामनेस मिले, यही चीज उन्हें अपनी खेती बाड़ी से मिलती है. और धरती माँ से टच में रहकर ना वो बहुत काम फील करते हैं, which is a beautiful, beautiful thought. क्योंकि of course, जब आप धरती से लगे रहोगे, जुड़े रहोगे, तो आप कितने humble भी रहोगे नहीं. और अगर बात की जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की humble journey की, तो इन्होंने शुरुआत की थी मुन्ना भाई MBBS से. I don't know आपने ये बात notice करी है कि नहीं करी है. हमने सब ने मुन्ना भाई MBBS तो देखी है ना. उसके अंदर वो सीन याद है आपको, जब सुनील दत्त साहब बॉम्बे पहुंचते हैं अपनी वाइफ के साथ और प्लेटफॉर्म पर ये लोग उतरते हैं, तो एक पॉकेट मार आ जाता है और उसको वो पकड़ लेते हैं. वो जो पॉकेट मार था ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. कहां से कहां तक आ गया यार ये बंदा. सच एन इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी विच क्लियरली स्पीक्स ऑफ द फैक्ट कि लगे रहो मुन्ना भाई तो पहुंच ही जाओगे अपनी मंजिल पर. फ्रॉम मुन्ना भाई टू हॉलीवुड. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी काम किया है. 2016 में देव पटेल की एक मूवी आई थी लायन, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक रोल अदा किया है. Well, his talent is such कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अननोटिस नहीं जाता है. Wishing him a very happy birthday today. You stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: साधना सरगम, अनुराधा श्रीराम, उस्ताद सुल्तान खान और राकेश पंडित की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म मकबूल इज अ ब्यूटीफुल पीस।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गाना कैसे चूक सकता है अपने लिरिक्स के वादों से। यार ये गाना म्यूजिक के मामले में तो कमाल है ही है, बिकॉज यहाँ पर हम विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की जोड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ लिरिक्स गुलजार साहब के हैं और विशाल भारद्वाज की म्यूजिक है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो म्यूजिक तो इस गाने का कमाल है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल मुझे गुलजार साहब के बोल लगते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट इतनी खूबसूरती से करते हैं ना इस म्यूजिक को कि क्या ही बताऊं। हालांकि ये जो लेख है, ये पूरा का पूरा लिरिक्स का जो लेख है, दैट is quite a lot inspired by Amir Khusro ki writing, who is the father of Qawwali, by the way. And ye gana jo hai, ye basically set hai on a shaadi ka ghar, jahan par ek dulhan ke baare mein baat ki ja rahi hai ki kaise wo sharma rahi hai, kaise wo itla rahi hai, apne piya se milne ki chaah rakh pa rahi hai. Aur iske lyrics agar aap gaur se suno na, to aapko ye lyrics bahut pasand aayenge, because of the reason ki is gaane mein sabse zyada highlight hota hai Jhinmin Jhini, hai na. Lekin jab lyrical part aata hai na, to aksar hum idhar udhar ho jaate या म्यूजिक में खो जाते हैं। मगर मैं आपसे कहूंगी कि अब जब मैं ये गाना चलाऊंगी ना आपके लिए, तो इसके लिरिक्स को गौर से सुनना, जिसका एक पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वेयर इन इट इज सेड कि हिना में छुपा के जिया रख दिया, यानी कि जब दुल्हन मेहंदी लगाती है तो उस मेहंदी के अंदर दूल्हे का नाम छुपा हुआ होता है ना, तो उससे रेलिवेंट ये बात कही गई है कि हिना में छुपा के जिया रख दिया, हथेली पे जलतू दिया रख दिया, ओए होए, रोशन रोशन पैरों से खुद ही शर्माऊं, यानी कि रोशन रोशन पैर तब जब वो मेहंदी के रंग से रोशनी दे रहे होते हैं, खिल रहे होते हैं, निखर रहे होते हैं, मैं इस पग उस पग डोलू जाऊं ना जाऊं, यानी कि दुल्हन जो है वो ये सोच रही है कि यार ये जो मेरे मेहंदी के पैर हैं, मैं इनको इधर उधर रखती हुई दूल्हे से मिलने के लिए जाऊं या ना जाऊं। बस अब मैं ये गाना चलाऊं ताकि आप इस गाने को गौर से सुनो, एंजॉय करो, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। कमिंग अप दिस ट्रैक फॉर यू, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: भाई ये तो हम जानते हैं कि किशोर कुमार ने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अपने ग्रोइंग अप इयर्स में जब वो संगीत सीखना चाहते थे तो क्यों नहीं सीख पाए? सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था और कैसे शेयर किया था।
1: चल के तुझे

0: पले। लेकिन हकीकत यह है कि जवानी में प्यार कम मिलता है और मुसीबतें ज्यादा। वो ऐसे कि मेरी जवानी ने चाहा कि मैं बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक बनूं, मगर चूंकि मेरे पिताजी वकील थे और उनकी कचहरी में संगीत का कोई स्थान नहीं था, इसीलिए मैं संगीत की कोई शिक्षा नहीं ले पाया।
1: भाई बिना संगीत की शिक्षा के ये ऐसे तोप थे, शिक्षा ले लेते तो पता नहीं क्या ही ये तोप बड़ुम बड़ाम कर देती। और पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: It's hot.
0: Purani jeans. With Charu. Only on

0: ये तो हमको पता ही नहीं था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि बॉबी फिल्म जो ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, उसमें मेन रोल बॉबी के रोल के लिए नीतू सिंह का भी ऑडिशन हुआ था, वो सिलेक्ट नहीं हुई, डिंपल कपाड़िया सिलेक्ट हो गई। भाई वैसे नीतू जी एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती थी, बट ये बड़े होने के बाद वाला जो डेब्यू होता है वो फ्यूचर हस्बैंड के साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी साल फ्यूचर जेठ जी के साथ इनका फिल्मी डेब्यू हो गया 1973 की ही फिल्म रिक्शा वाला में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी वाला एक और गाना सुन लेते हैं। काफी सेंसुअस हॉट गाना है ये। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म का वो गाना देखा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इट्स अ फन सॉन्ग जहाँ पे देवानंद हेमा मालिनी को सॉर्ट ऑफ टीज कर रहे हैं, उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग खिड़कियों के द्वारा। उस घर में इतनी खिड़कियां दिखाई गई हैं भाई, इतनी खिड़कियां हैं, ऐसा सोच के लगता है कि ए वुमन लाइक हेमा मालिनी इज लिविंग देयर, इट इज सो अनसेफ। हालांकि खिड़कियां बंद करने के तरीके हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं, कर्टन्स हैं, खिड़की पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा भी तरीका है, लेकिन इतनी सारी खिड़कियां, इतनी सारी छिपकलियां घुस आती होंगी गर्मियों में, चूहे तक घुस सकते हैं। अरे चूहे क्या, डॉग्स कैट्स कुछ भी आ सकता है, कबूतर, इतनी खुली खुली खिड़कियां हैं, वो मेंटेन करनी कितनी मुश्किल हो, और रात को सोने से पहले कितनी खिड़कियां बंद करोगे। अगली बार वो गाना देखे तो ध्यान से देखे और काउंट भी करना कितनी खिड़कियां हैं, मैं भी काउंट करूंगी अगली बार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

So the other day I watched this film called Jhooti and I fell in love with Rekha once again. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये ना मिड 80s की फिल्म है जब रेखा अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वो बहुत फिट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी। तो इसमें ना उनको घर में सबसे छोटी दिखाया गया है, वो बहुत पैम्पर्ड भी है और उनको झूठ बोलने की आदत है। इस फिल्म में अमोल पालेकर, राज बब्बर ये लोग हैं। और ऐसी क्यूट हार्ट वार्मिंग सी फिल्में किनकी होती हैं? ऋषिकेश मुखर्जी की। अगर आपने फिल्म नहीं देखी प्लीज देखें। और अभी हम गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसे बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसमें रेखा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। खूबसूरत फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्च।

प्रतिष्ठा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: purani jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

भाई ज्यादातर लोग सुप्रिया पाठक जी को खिचड़ी टीवी शो में उनके हंसा के रोल के लिए याद रखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही कि मेरा नाम हंसा और प्रफुल व्हाट इज एंड माय फेवरेट, मैं तो थक गई बाई चाप। नो वंडर दिस परफॉर्मेंस, दिस रोल इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन सुप्रिया पाठक जी ने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं इन वैरायटी ऑफ रोल्स। आपको पता है ना, ये फेमस एक्ट्रेस दीना पाठक जी की डॉटर हैं और इनके फादर बलदेव पाठक यूज्ड टू मेक ड्रेसेस फॉर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना एंड दिलीप कुमार। Anyway, coming back to her performances, इनको इनकी पहली फिल्म 1981 की कलयुग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसके बाद की जो इनकी फिल्म थी उसके लिए भी उनको यही अवार्ड मिला था। उसी फिल्म का हम यहाँ गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम बाजार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी चीज़ विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1975 की फिल्म जख्मी का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है ये फिल्म ताहिर हुसैन साहब ने प्रोड्यूस की थी, जो आमिर खान के फादर थे। और आमिर खान की दो फिल्मों का नाम पहले जख्मी होने वाला था, एक तो उनकी 1998 की जो गुलाम फिल्म थी वो, और फिर 2012 की तलाश, लेकिन किसी वजह से फिर जख्मी नाम नहीं रखा गया। ऐसे नाम में क्या रखा है, कहा था विलियम शेक्सपियर ने, गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकार लें, गुलाब की खुशबू तो वैसी ही रहेगी ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। यहाँ पे नाम में काफी कुछ रखा है। सुनते रहिए मिर्ची

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1976 का मास्टरपीस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है कभी कभी फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ बहनों भाइयों, उस साल गीत माला में ये गीत पायदान नंबर एक पर था। इस गाने के लिए खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, साहिर साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट और मुकेश साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छा, खयाम साहब ने ना ये गाना, इस गाने की जो ट्यून है, ये 50s की किसी फिल्म के लिए कंपोज की थी। वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, गीता दत्त एंड सुधा मल्होत्रा उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई या रिलीज नहीं हुई, तो वो गाना खयाम साहब के पास पड़ा हुआ था। तो जब ये कभी कभी फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, उन्होंने यश चोपड़ा को ये ट्यून सुनाई, चोपड़ा साहब को पसंद आ गई, साहिर साहब के लिरिसिस्ट इस पे फिट कर दिए गए, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया और ये मास्टरपीस बन गया। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

यार इस गाने को इसका वीडियो देखते हुए सुन लो ना, तो ये सैड सॉन्ग से कॉमेडी सॉन्ग बन जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गैम्बलर फिल्म का ये गाना जिसमें देवानंद साहब ने ऐसी मूंछें लगा रखी हैं जो बहुत फनी लगती हैं। वैसे देखो देवानंद साहब बहुत बोल्ड थे, बहुत स्टाइलिश थे, अपने लुक्स के साथ वो इतना एक्सपेरिमेंट करते थे, रिस्क लेते थे, लेकिन ये वाली मूंछें ना ये बड़ी शॉर्टी लग रही हैं। वो जो नाटक नौटंकी थिएटर वाली मूंछें नहीं होती बस ऐसे चिपका दिए हैं, वो वैसी लग रही हैं। चलो ये मूंछी वाला एपिसोड साइड रखें, तो अदरवाइज देवानंद साहब के स्कार्फ्स, उनकी जैकेट्स, उनके स्वेटर्स, इवन इन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स अगर आप देखें उनका स्टाइल ऐसे नोटिसेबल होता था। और एक और स्टाइल आइकॉन जो कि जीते जागते स्टाइल एंड फैशन की मूरत थे, फिरोज खान साहब, उनका गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

भाई एक शायर हैं हसन कमाल साहब, उनकी मैं गजल पढ़ रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो कहते हैं, सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे, गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, हम सजाए हुए शमाओं की दुकान बैठे थे। यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था, हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। लोग तो बुझते चिरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहां बैठे थे। मैं कदा और भी तन्हाई का सामान निकला, हम की तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। हसन कमाल साहब ने बहुत सुंदर फिल्मी गीत और गजल भी लिखे हैं, तो उनकी लिखी ये खूबसूरत गजल सुन लेते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है 80s में अमृता सिंह को मजाक में मर्द सिंह भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये क्या सीन था, कौन उन्हें ऐसे बुलाता था, किसने उन्हें ऐसा नाम दिया, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया ये मैंने नहीं दिया, ये एक बार टिंपू कपूर ने मुझे दिया था। वो मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था, तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो, फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई।
0: चिंपू कपूर यानी कि राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई, इन लोगों ने 80s में आई थिंक एक दो फिल्मों में साथ में काम किया था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जो अमृता सिंह और राज बब्बर पे पिक्चराइज्ड है, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

0: वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी स्मिता पाटिल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी टीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको ज्यादातर उनकी 8 फिल्म्स के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने बहुत ही बोल्ड वुमेन सेंट्रिक रोल्स प्ले किए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे भाग्य की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था, जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो, जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं, लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है, या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था।
0: Well, उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है, याद है नमक हलाल, शक्ति, ऐसी फिल्में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

फिजिसिस्ट इंदिवर साहब का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये झांसी के थे और 50s से लेकर 90s तक उन्होंने बहुत अमेजिंग गाने लिखे हैं। इनका पहला जो एक गाना बहुत हिट हुआ था वो था 1951 की फिल्म मल्हार का, याद है आपको वो गाना, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। और यहाँ पर इंदिवर साहब का ही लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: Is it more?

on my channel.

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh, आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश खुश ओह ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ ओह आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश खुश ओह ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: रिश्ते में तो ये हमारी माँ लगती है। नाम है इनका एंग्री यंग वुमेन।
1: श्रुति श्रुति
2: सब तुझे छोड़ेंगे छोड़ेंगे बारी बारी।
3: नियत सीरत फितरत।

0: रिश्ते में तो ये हमारी माँ लगती है। नाम है इनका एंग्री यंग वुमेन। रिश्ते में तो ये हमारी माँ लगती है। नाम है इनका एंग्री यंग वुमेन।
1: अभी और चार ऐसे ही एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: When Pete Free.